0: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 98560 2279।
1: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराई 103.8 MHz अंतर मन की आवाज।

0: connect your dream, connect your future, STEAM, connect your heart.
1: Connect Australian Education and Visa Services. शिक्षा गण्डकी चार तुले गौड़ा वाट इन डिपार्टमेंट भवन सन्दै मोबाइल 98562340 93 र 98562380 73

सबौसा माना दौरा फुर्ता अनि बकुलाउ करे कसारी तनमा सजाउ कौरा रौलो नदन्दामा नेपाल हासो मिथिला कलामा ऋषि र बैरो अब के नजा